तो कह रहे जी हो गई जकाल रन लिखा हेल हन ची हो गई निर्माण उस रे न का हो बकल करमान उस चिरूली कुतान के लूनिस ते ओके उस रु के हो माई कुला न अलाचक सलाचो रु के ट्रेंटा मेरा सिंकुंटा रे न जी ने रूने गबानो हरमान उस तेरमाना सबनेम न का हो बकल करमान उस पर गिते ओके उस रु के हो माई चिरूली लोकल कुतान के इन चिरूली लोकल होना ले निर्माण उस रे जो को ची ओके Zahob Chi Casillas Hokanak Aran Jam Joli Casilla 22 Jam Joli Casilla 23 24 25 Ut 26 Raji Hokin Hermanos Nakakele Bokpal Nakakele Shkabila Lechor Chokin Sishkakele Kakwa Nakanaw Chakyanak Dios catch in a gin in a spats, really, Dios in a spats, cleaner la auto chic chish, jebal resilical by hermanos o canachiokin a canon early radio felicidad, George Campbelli cavil chole, George Campbelli sail chole hill, yo a quiches campbelli ratin, Dios o canachiokin hermanos o can cause a junco money, la ish bepen in sibakip. Areni okeng la insali kasiya 22 ruki humai areni